अरे वाह क्या बात है। सो ट्यूसडे की शाम है, 15 तरीक हो गई ऑलरेडी, अद्धा सितंबर तो लंघ गया यार। चलो कोई गल नहीं, वधिया चीज है। हुण समा देखो जो आप इंजॉय कर रहे होंगे, जो समा वधिया अपना लंघ रहा होंगे ना, तो बंदे नूं पता ही नहीं लगता कि दिन किन्नी छेती पास होंगे। कहते नहीं होंगे कि जो ती नहीं बड़ा इंजॉय कर रहे जिंदगी, कोई औखा समा चल रहा ना, फिर टाइम लंघन लगता कि बस यार एक एक दिन एक एक महीने वाग लंघ रहा, इन्ना समा लगता। सो नंबर है अपना 905-673-3337 अपना फोन नंबर है, ते गल्लां बातां थोड़ियां साडियां हो रही ने। एक तुहानू अज शुरुआत दे विच ही जानकारी दे दीए, बड़ा ही कमाल दा एक ग्रोसरी स्टोर खुलन जा रहा एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड दे कोर्नर ते, अनाज मार्ट। वाह, ग्रैंड ओपनिंग अनाज मार्ट दी हो रही है सैटरडे 19 सितंबर 12 बजे। जिहड़ा नवा एयरपोर्ट रोड मेफील्ड ते प्लाजा बनिया 6141 मेफील्ड रोड, ते तुसी हो जो रेडी यार। ए बुलट दा मोटरसाइकल, एलईडी टीवी अते एयर फ्रायर वर्गे प्राइजेस कढ रहे हैं। बुलट दा मोटरसाइकल प्राइज ओ बले, ते थोड़े शहर च भी नवा ग्रोसरा स्टोर अनाज मार्ट इहदी बड़ी धमाकेदार ग्रैंड ओपनिंग हो रही है सैटरडे 19 सितंबर दुपहरे 12 बजे। $100 की शॉपिंग तुसी अज तो करो, अज जाओ, खुल गया, सॉफ्ट ओपनिंग होगी खुला, तो अज तो लैके तुसी जाओ, $100 की शॉपिंग करो, अपना नाम ड्रॉ च पाओ, तो रॉयल एनफील्ड बुलट मोटरसाइकिल एलईडी टीवी एयर फ्राई ते होर बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। एयरपोर्ट मेफील्ड के कोर्नर से 6141 मेफील्ड रोड अनाज मार्ट यूनिट 42 ए पहुंचो, जाओ ते $100 की शॉपिंग अज तो करो, नाम ड्रॉ च पाओ, ते सैटरडे नूं जिहड़ा विनर है इस ग्रैंड प्राइज का अनाउंस किया जाएगा।

सुबह नू यार पता नहीं की होना। सो कल सुबह नू यार पता नहीं की होना है, मौज मस्तियां मार पता नहीं की होना है। सो कल सुबह छोड़ो यार, ये तो यही नहीं पता कि अगले मिनट सेकेंड अगले घंटे दो घंटे दे विच की हो जाना। समय समय दियां गल्लां हुंदियां ने यार। सो ओके, सो एक तुहानूं अनाज माड़ दी जानकारी मिल गई, ते दूजी इनफॉरमेशन तुहानूं असीं दिंदे आ कि एक बड़ी प्यारी फिल्म रिलीज होण जा रही है तुहाडे अपने शहर। सो इस फिल्म की थोड़ी जी जानकारी तुहानूं देईए बई। बहुत ही कमाल की बड़ी प्यारी ते सिनेमे नूं एक किस्म दे नाल रेवोल्यूशनाइज करन वाली फिल्म रिलीज होण जा रही है, मिट्टी दे पुत। ते बड़ी वड्डी स्टार कास्ट, मैं कहना हुंना कि असल जे सिनेमे दे विच कोई एक्टर आए ने तां देव खराउड़ ते योगराज सिंह वर्गे आए ने कोई एक्टर यार। सो तुसी जरूर फिल्म मिट्टी दे पुत देखण दे लई हो जाओ तैयार। बहुत ही कमाल दा सिनेमा, गीत संगीत ते गीत थोड़े लिए ला रहे हैं सुरजीत खान साहब की आवाज़ दे विच इस बड़ी प्यारी फिल्म मिट्टी दे पुत, जो कि थोड़े सिनेमाघरों के 18 सितंबर को रिलीज हो जा रही है। सुनो, आनंद लो ते फिल्म देखने को हो जाओ रेडी। गाना सुनो, गाना सुन के थोड़ा उई जी करे होना यार कि असी फिल्म देखने जरूर पहुंचांगे। देव खराउड़, शरण कौर, विक्रमजीत विरक, अनीता मीत, योगराज सिंह वर्गी एड्डी वड्डी स्टारकास्ट होवे ते तुसी जरूर यार सिनेमा च

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना कार सारे तो सोना हो भी।
4: बस इन्नी गल हो कार।

0: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
1: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
2: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
3: सिमरन बड़ी पतली हो गई है, कुछ खांदी खुंदी नहीं?
4: ले दस, काम तो जामा के करे रोटियां बनावा
3: तो टिफिन लवा ला।
4: घर दा स्वाद कित्थों मिलदा वारो?
3: मतलब तू तवा किचन दे फूड नहीं टेस्ट कीता? तवा किचन बिल्कुल घर वर्गा स्वाद। कस्टमाइज्ड टिफिन पैकेजेस अवेलेबल, फूड क्वालिटी ते क्वांटिटी एकदम लाजवाब।
5: 50 सनीवेल गेट, ब्रैम्पटन, माउंटनेश एंड वेवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca। 905-790-1699, 905-790-1699, kitchen.ca।
6: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो? कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो? फिर फेयरडी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस, 28 एकर लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस, डबल कार गैराज, ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप। यही नहीं, 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते। फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम, फेयरडी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर, एंड 905-671-2000, 905-671-2000।
7: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, the voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
8: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, जिथे तुसी ट्रक वॉश, ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो। इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने, जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45, तुसी कैट दी बैटरियां विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850, सारियां रियर ड्रम and rear brake change at $750, and AC recharge is at just $180. So reach out to them, call at 905-452-9955. Inna da address hai 71 Stafford Drive, Brampton. They right now a hiring bhi kar rahe ne, je tanu truck mechanic da koi experience hai, you can call them. Their number is 905-452-9955.
9: Bandi tijja vyaya Canada de vich, nahi India warga taste, nahi India wargi quantity, chhotiyan chhotiyan plate bada dende ne. दूजी बारी खाना लेने जाओ तो बफे खत्म हो जाता है।
3: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन की केटरिंग खादी सी। सच्ची कहो तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुकिया।
5: तवा किचन, 50 सनीवेल गेट, ब्रैम्पटन, माउंटनेश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca। 905-790-1699,
10: रियल एस्टेट दी दुनिया बिचाओ, अपने सुपनिया नु सच कर वखाओ। फेयरडील रियलिटी इन ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ,
11: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सिखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ।
10: फेयरडील रियलिटी इन ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने।
11: आज ही कॉल करो फेयरडील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
10: 905-671-2000।
11: फेयरडील नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ।

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप फेस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ 9054569900।
2: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
3: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर।
4: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ।
5: Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television, Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet and Realtor Harp Garewal presents The

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: तुसी अपने फोन प्लान पे बहुत पैसे दे रहे हो। सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स, बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो। चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल। सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। विजिट करो सेलुलर पॉइंट, सेव टुडे, इट्स दैट इजी। अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो। सेलुलर पॉइंट, मोर फोन्स, मोर प्लान्स, मोर चॉइस।
4: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़े अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, यह सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से। तुसी मैनू कॉल करो, ये नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535 विद ई छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: ना जाट लोबीडियो.com और कोई सेवा
1: केवन के तुम गालिए
2: केवन केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मिठाइयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो
1: केवन के तुम गालिए।
3: घर तो आप एडा वड्डा इना सोना ले लिया हूँ अपलायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
4: हाँ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस है ना फ्रिज स्टोव डिशवॉशर वॉशर एंड ड्रायर एलईडी टीवी सब इथो ही लवांगे। इना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अपलायंसेस खरीदो पेमेंट भी 6 महीने च करनी है वो भी बिना किसी ब्याज दे होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करेंगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 905-450-2828-905-450
5: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्कार मैं
6: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट

0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा तो मैं लाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, मैं आ जा तो मैं लाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: डीएल मुंडी रियल स्टेट दा सितारा लोकां दा विश्वास डीएल मुंडी नवे प्रोजेक्ट दा माहिर डीएल मुंडी डील दवाउण दे विच होर वाधा करदा डीएल मुंडी कम्युनिटी विच लंबे समय तो नाम बना चुका डीएल मुंडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दीआं बरीकियां नूं समझण वाला डीएल मुंडी अगली प्रॉपर्टी तुहाडी एक्सपर्ट एडवाइजर रियल्टर डीएल मुंडी 416-313-1313 डीएल मुंडी 416-313-1313
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.

0: desk. Locally covered, nationally connected.
1: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों, आप सबका स्वागत है। आशावादियां, उम्मीद करते हैं तो अड्डा इदा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। हरप्रीत सैनी जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून। अपने ने कोई भी गलबात करनी है, नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दी थी पिछले दिन कि चार मुंडिया डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया, टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नूं डिपोर्ट किया है। वैसे जे देखा जाए मई 9/2022 की गल है, बीसी दे विच कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई कराउंदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्होंने ही उन्होंने कुट कुट के मारता, थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी ओह लै के भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्हां विच गुरकरन सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने, ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नूं पहलां ही डिपोर्ट कर दिता गया।

0: Listen live Vatno Do Radio with Sukhi Nijjar.
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
3: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157 416-570-0157

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज खुश तो बात हो गया था।
2: ओ ता होना ही है जो तो टिनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तई नकदा बनदा ही है।
1: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
2: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
3: क्यों कह रहे हो पर?
2: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
8: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: सही सुनिया बई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्किया, व्याह होवे पार्टी या होर किट्टी है। स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर घुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉमिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
1: जेकर तुहाडी बेसमेंट लीक हो रही आ, नहीं ठीक हो रही, तो तुहानूं मैं बाई सतविंदर होना दा नाम दिना। इन्हां ने बेसमेंट दे विच एक ऐसा इंजैक्शन है जिहड़ा ओह लाउंदे आ कि बेसमेंट दा खंघ जुकाम सारा ही हट जांदा। 22 सालां दा एक्सपीरियंस आ बाई सतविंदर होना नूं। सो 25 साल दी वारंटी भी करदे आ कि दुबारे मुड़ के लीक नहीं होगा, चाहे अंदरले पास्यों जां फिर बाहरले पास्यों डिग करके भी तुहानूं सर्टिफिकेट स्पैशल देणगे। बेसमेंट लीकिंग दा पक्का इलाज करवाउणा तां बाई सतविंदर होना नूं कॉल कर लिओ। नंबर नोट कर लो, एक क्रैक आ, दो क्रैक ने, फाउंडेशन च क्रैक आ, तां नंबर नोट करो 416-451-4565 416-451-4565 416-451-4565।